satanan sauda parka ke kitam dismarti ardas hovegi hukm nam kada prasad di de bachiyan valo gurmukh parivar valo jo seva hai oh vi pravan karni to aao hun anand sauda parka sare milke kariye an guru nanak padshah meherwan sadguru आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई भाई साहब जी जिन्हां नूं आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी तो आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने विच सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द दा आदर करदे कीर्तन भेट गाउण अरदास कराउंदे हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा नूं बच्चे बच्चियां नाम दान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो।

एक कर्म छड़ के तो करोड़ा कर्म कर। भुख्या नु रोटी खुआ, जल चका, सेवा कर। पातशाह कहंदे ने तू एक कर्म छड़ के कई कर्म करेगा, जे नाम हिरदे विच नहीं वसया नरकां दा बुआ जरूर वेखना पवेगा।

बहुत प्राचीन मधुर अते परम खुरागा विचों एक है। इस विच ऋषभ अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। बादीस्वर धैवत अते संबादी ऋषभ है, इसकी आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ फुटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषभ अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। पैरों का वातावरण अति सुहावना हुंदा है, प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष का हंकार भन्निया। गुरु की करणी बारे फरमान है, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी की सूरमताई का भी जिक्र है, जिन्हां मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द दा गायन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा नाही

सी, तू मंदर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

नानक सफल ओ काया, जांको दृष्ट मया हर राय, सा बंदी ते लई छड़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। साधु दी संगत जिसनु हो गई, उस साधु ने क्योंकि अपनी काया नु साध्या है, इसनु सही कर लिया है, इसनु हील कर लिया है, इस दे अंदरले तमाम वो अवगुण उसने तब्दील कर ले हैं, उस दी संगत तुहानू जीना सिखाएगी। साध संग मिल हर रस पाया, साधु दी संगत दे विच मिलके कहिंदे तुसी अपने जीवन दे विचों एक गलत रस छोड़ोगे अते वाहिगुरु दा रस जदों अपने अंदर पाओगे, वाहिगुरु दे रस ने इस काया नू, गली हुई काया नू हील करना शुरू कर देना है। साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया, कहिंदे ओही काया जड़ी है दोबारा सफली हुंदी है जिसनू साधु की संगत प्राप्त हो जाए। तो अज का कीर्तन इतने समाप्त है, क्योंकि समा समाप्त है। आप जी ने हुण तक दे जो कीर्तना दे विच विचार सुनी है, शरीर दे संबंध दे विच, उस दे विच दोने पहलू आप जी दे सामने रखे हैं। एक पहलू तो जो उसकी असलियत है, दुर्लभ है, मंदिर है, सरोवर है, रब की कामणी है। पर दूसरा पहलू, अगर असी अपने अंदर आ तमाम जो अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, लालच, हंकार इत्यादि रखते हाँ, तो फिर इस काया नू महाराज जी कहते हैं, कहते हैं हर बिसरत तेरे गुण गलिया, वे तेरे सारे गुण गल गए हैं। और गली हुई काया, तमाम काया गलियां पईयां हैं, इसे करके एक दूसरे तो किसी नू कोई खास खुशी या आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। गले हुए तो किसी नू की कुछ मिल सकता है, की आनंद प्राप्त हो सकता है। पूरी चुकी खिमा अपनी काया नू साधु दी संगत दे द्वारा हरी रस दी दवाई पाके इसनू हील करने की कोशिश करो। वाहेगुरु जी।

अपने खजाने विच अपने भंडार विच बहरे बेपाया अंदर सागर विच मिल गई। ओनू एक दात जरूर मिल गई कि वह छोटी तो लामादूद हो गई वड्डी हो गई वह जुज तो कुल हो गई। अनेकता विच बेअंतता विच जा रली फिर इस दे दो चीजा खत्म हो गई नाम ते रूप इसम ते शकल नेम एंड फॉर्म ध्यान इनू ये दात मिली ए वड्डी हस्ती विच रल गई ते वड्डी हो गई पर एदी जात एदी शकल तेरा नाम दोनों खत्म हो गए। इवें श्री वाहिगुरु जी अंदर रल के सानू इन्हां दोहां चीजां दा बड़ा ही हंकार रहिंदा है साडी वखरी होंद है ते साडा आ नाम है। जिवें हो जाए किसी गहने नूं ते हंगता ते उहदे दो नाम पै जाण हंकार नाल इक उहनूं छल्ला कहण लग पईए ते इक उहदी शकल कोई होर हो जाए दरअसल उह कुंद नहीं है सोना ही है। इस तरह ब्रह्म तों निखड़ के सानू ए मुख दो गल्लां मिलियां ने एक साडा नाम हो गया जिहदी सानू बड़ी हंगता ते एक साडी शकल हो गई। जदों अपने नूर विच मिल जांदी है किरण ते किरण ने रहिंदी सूरज हो जांदी है शोला शोला नहीं रहिंदा पट हो जांदा है जर्रा जर्रा नहीं रहिंदा धरती हो जांदी है बूंद बूंद नहीं रहिंदी बहरे कुलजम हो जांदी है। उसका नाम ते रूप मिट गया। गुरदेव फरमांदे ने नदियां ते वाह पवै समुंदर ना जानिए हुण कौन दस सकदा है ये नर्मदा है ये कावेरी है ये गोदावरी है ये सतलुज है ब्यास है रावी है चनाह है जेलम है सिंध है गंगा है जमुना है क्योंकि वो अपने मंबे विच रल गई ना पव है समुंदर ना जानिए ना रूप रहा ते ना उन्हां दा नां रहा। ए बशर इस तरह तू भी उस परमेश्वर विच रलना है साला ही साला। भाई साहब जी ने 8:5 ते जुग जुग भगत उपाया उचारण लई हुक्म कीता सी इसलिए इधरों वेखिया तां 3 मिंट रहिंदे ने इधरों भावें 2 ही रहिंदे हों। तो बेनती है कि मनुख है कि असी मोटी तकनी नाल तकीए तां इंसान तिन्ना चीजां दा जोड़ प्रतीत हुंदा है ध्यान नाल दास कोई साखी नहीं कर रहा। एक तां इह शरीर है दूजा ए मन है ते तीजा ए आत्मा है। एक जमा दूसरी चीज जमा तीसरी इक्वल टू इंसान मनुख बन गए। शरीर यानी तन है मन है ते आत्मा है। फिर विश्लेषण कीतियां मन दियां भी 4 किस्मां बनदियां ने मन बुद्ध चित अहंकार। मजमून जरा बोझ पा के समझन योग है। मन बुद्ध चित अहंकार मन दिया 4 फॉर्म्स बन गई ते ए आत्मा भी जदो ए माया दी आलूदगी विच होवे तो मन नाल कॉम्प्रोमाइज करती है। जदो ए परमेश्वर दा नाम सिमर के गुरमुख पुरशां दी सतसंगियां दी संगत नाल ए उची हुंदी है ते ब्रह्म स्वरूप वल नूं जांदी है शुद्ध आत्मा वल नूं जांदी है। पर मोटे तौर उत्ते एक असी तन हां एक मन हां ते एक आत्मा है। भावें हरिमंदर साहब दे गिरद फैले हुए सरोवर विच इशनान कर लईए ते भावें गंगा जल नाल नहा लईए चाहे चश्मा कौसर आबे जमजम नाल नहा लईए मन पानी नाल साफ नहीं हो सकता। ते इसे तरह बाणी पढ़ लईए कुराने करीम कोई पढ़ लवे अंजील तौरेत होर इब्रानी धार्मिक पुस्तकां दा मुतालिया कर लिया जाए तन बाणी नाल साफ नहीं हो सकता। ध्यान नजर मन पानी नाल नहीं धुल सकता ते तन बाणी नाल नहीं धुल सकता ते आत्मा इन्हां दोहना चीजां नूं करी जाओ अमलाइए ना ते ओ ज्ञानवान नहीं हो सकदी। इसलिए तन दी सफाई जल नाल हुंदी है पानी नाल हुंदी है ते मन दी सफाई बाणी नाल हुंदी है।

एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहिब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आखदे ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसे ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी सै मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मिलासा, जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे।

माता कहती है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया। स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आख देन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आख देन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भा

राम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता। बिन नेत्रा कहां को पिखे, नाम बिना नर कहीं न लिखे। बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित।

मेरे पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने उस मनुख नू कितने कु श्राप दिते हैं जेड़ा मनुख नाम तो हीणा है। पातशाह आखदे ने ओ सप है, चोला तो उसका मनुखी है पर कम उसके सप्पां वर्गे हैं। कौड़े बचन बोलदा है ते जहर भरिया अंदर हर वेले। पातशाह आखदे ने ओ कां दी तरह है, पाठ तां कीता नहीं प्रशादा पानी छक लिया, नितनेम होया नहीं, कां वर्गी बिरती है। पातशाह आखदे उस मनुख दा नाम निशान बेसवा दे पुत्र दी तरह मिट जाएगा जो मनुख नाम तो हीणा है। कुत्ता है, गदा है, आत्मा दा हत्यारा है। पातशाह ए बचन उस मनुख लई आख देन जिसने कदी 10-15 मिनट बैठ के भी कदी जुड़िया नहीं, कदी दाते दा नाम नहीं लिया। पातशाह गुरु अर्जन देव जी आख देन

0: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: Deve alag alag disne han, sot ek. Sharir paave alag alag han, par jot oha chugat sai, sai paya, pher palat. पर एक गल किसे किसे ने समझी, किसे ने आख्या ए गुरु होर, ओ गुरु होर, इस दी मर्यादा कुछ होर, उस गुरु दी मर्यादा कुछ होर। भाई गुरदास साहब जी कहना कहते ने इस भुलेखे विच ना रहियो। जे इस गलत फहमी विच रहा कि जो घर विच सुख साधन होण वह भी मुक जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह कहिंदे ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आए। रिधियां सिद्धियां उन्हां दे घरां विचों जांदियां रहियां, जिन्ह ने आख्या ए गुरु कुछ होर, ओ गुरु कोई होर।

उड़ो ना कागा कारे, देख मिली जय अपने राम प्यारे। राग कौड़ी दे विच उच्चारण किया होया

बहुत भागशील लोगों की जिंदगी दे विच ही हुंदा है। असी अपनी रोज की जिंदगी सवेरे उठण तो जदों साडी अख खुलदी है उस तो लैके रात में जदों असी बिस्तर दे विच

अगर आप सारे मैं पिछले की इतना चुकी क्या है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन्हों शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था उच्चा करने की कोशिश करिए। इन शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ, जिस शीशे दे विच असी अपने आप को देख सकी। मैं आप जी के सामने साढ़े सतगुरुआ की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ, ताकि सानू कुछ ना कुछ से चोट लगे कि असी क्यों जहे हाँ, अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिंदे हाँ उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश कीती है, हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कुछ एक प्रमाण आप जी दे सामने रखण लगा हाँ, अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। भाव उन्होंने कहन का यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंगी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लिए एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी को एक जो श्लोक है वो सुनाना चाहना। कहते हैं

ग्यारह श्लोक है। अगर असी एक बाणी मंत्र हन, अज ही मैं सवेरे एक लाइन पढ़ रहा सी, गुरु साहब कहने सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, कहने है कि तेरी बाणी ही असल अमृत असल मंत्र है। तो इतने हजूर एक कहते हैं कि बिखियन सिंह काहे रचो निमख ना होए उदास। उदास लफज का जो इस दे पिछे जो कोनोटेशन है उसनों असी थोड़ा ध्यान दे नाल समझिए। असी उदासी तो मतलब समझते हैं डिप्रेशन, गम, जिसनों असी बड़ी नैगेटिव सेंस दे विच लेने। लेकिन गुरबाणी जदों उदास लफ्ज आता है तो इस दे जो भाव हैं इस दे अर्थ हैं वो टोटली अलग हैं। हुण असी उदास लफ्ज नूं किस तरह समझिए। एक है जो साड़ी जिंदगी दे विच डिप्रेशन आता है, असी बड़े अंदरों एंगजाइटी दे नाल फ्रस्ट्रेशन दे नाल जदों कमजोर हो जाने हाँ उदों भी साड़ी जिंदगी च उदासी आती है। लेकिन गुरबाणी उस उदासी की गल नहीं करती। गुरबाणी किस उदासी की गल करती है उसनों असी इस तरह समझिए कि जदों जिस चीज दे विच साड़ी रुचि होवे ओ सानू ना मिले तो फिर की होंदा है, साडे अंदर एक तोटा एक काल एक थुड़ महसूस होंदी है। अते जिस चीज दे वास्ते साड़ी रुचि होवे अगर ओ सानू मिल जाए तो सानू एक खिड़ाव महसूस होंदा है, एक ताजगी मिलती है। गुरु साहब उदासी की गल जो करते हैं तो भगत की जिंदगी की एक उदाहरण लैके गल करते हैं कि भगत की जिंदगी दे विच रब दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल प्यार होंदा है। उस दी रूह की खुराक सत्संग होंदा है, उस दी आत्मा की भुख पूरी होंदी है जदों उसनू गुरबाणी गुरबाणी पढ़ने वाले की संगत गुरबाणी दे विचार अते साध संगत का माहौल मिले। जदों उसनू ये नहीं मिलता तो उस दे जीवन दे विच एक उदासी आती है, एक उपरामता आती है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं इंसान तुसी हमेशा इन्हां चीजां दे विच ही उलझे रहिंदे हो, फसे रहिंदे हो, खोए रहिंदे हो, तुसी इन्हां दे विचों कदे उपराम ही नहीं होंदे। भाव के तुसी कदे आखदे ही नहीं हो, कदे रचदे ही नहीं हो, तुहाडी रुचि जो है इन्हां चीजां दे विचों कदे निकलती ही नहीं है। कहते हैं बिखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। कहते हैं निमख भरदे वास्ते भी पल भरदे वास्ते भी तुसी इन्हां नूं छड्डना नहीं चाह रहे, इतनी ज्यादा इन्हां दे विच तुहाडी जिंदगी उलझ चुकी है। निमख ना होए उदास कौ नानक हर भजमना परे ना जमकी फास। लेकिन जदों गुरु साहब साडी जिंदगी का मुआयना करते हैं, साड़ी जिंदगी का जो एनालिसिस करते हैं तो उन्होंने साडे मुतलक अजिहे बाणी च शब्द कहे हैं, मैं आप जी के सामने सुनाना। कहते हैं काम क्रोध बिख भूख प्यासा आ साडे पले। काम क्रोध बिख भूख प्यासा जो दिसे सो आस निराशा नानक बिरले मिले उदासा। कहते हैं बिरले ही ऐसे सज्जन कोई मिलते हैं जिन्हां दे चित उदास हैं, पाप जिन्हां दे चित इन्हां तमाम दुनिया के झमेलिया तो उच्चे उठ के कुछ होर लभदे हैं। कहते हैं अजिहे सज्जन बहुत बिरले ही मिलते हैं। कबीर साहब उदास हैं, मैं पिछले कीर्तन दे विच एक प्रमाण दिता सी, असी उदास नहीं हैं। उदास का पाप जदों इन्हां चीजां च चित ना लगे, जदों आत्मा कुछ होर चाहे, जदों अंदर कुछ होर लगता होवे, जदों खाने च भी रूह ना रह जाए, पहनने च भी रूह ना रह जाए, दुनियावी मल्ला मारन च भी रूह ना रह जाए, जदों चित कुछ होर लभे उसनू कहिंदे हन उदासी। साडी अवस्था जिही नहीं है, कबीर साहब दी है। कबीर साहब

मैं इस सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों को सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों को तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो कास, ये जग जरता देख के पहो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित कदे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लगता, तेरा चित कदे अजिही चीज में नहीं लगता जिहड़ी कि हमेशा ही कायम रहे, ना कि तू उन्हां चीजां नूं लगता रहना है जिहड़ियां ने बिनसी जाना है। तो सतसंग जी अज दी सारी विचार दे विच जो सानू सुनेहा मिल रहा है, जो सानू उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान दे पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नू कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआ की नजर दे विच वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इना तमाम दुनिया के खाणिया के नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असीं इह सुणदिआं सुणदिआं अंदर यह देखना है कि साडी रुचि बदली है या नहीं बदली। असीं अपने आप से सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असीं जिंदगी च की लभदे हां, किस किस्म की साडी रुचि है, अते जिस किस्म की रुचि हुंदी है उसे किस्म का इंसान हुंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनू सुनो। कहिंदे हन

और मैं तो सुन बजब दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर कर अंदर पाए वजगो आए अगला मोहे मोह पाना खाए जता जता खावना तुझके साबास नानक हुकुम न चले।

के शुद्धता की शान जोबन के जानू के सत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण के सत्रन के सूल हो के मित्रन रे प्राण हो। राजन के राजा

अजे भी कोई वेचना पे है। मैं तो समझिया कि कोई नहीं वेचना, पर अजे भी कोई टक रही है, मना जरा खैर। तीसरी वेरी भाई जोगा सिंह फिर आऊंगे, फिर कन्ना आवाज खेड़ी

तो इनू नई भी सारी समझिए पर नहीं कड़ा तो तेन उपदेश देना है कि भाई ये कड़ा ये गुरु की हथ कड़ी है इन्हों हथा च मैनू पाया है इन्हों हथा नाल पराए तन नू ते पराए तन नू मैं तेरिया कोशिश कड़े का कोई सिद्धांत है इनू लोहे की तार मत ये कड़ा उपदेश देना है कि परधन पाहन तुल प्रिया परमात हमारे किरा अज मैनू पाया तेरी हथा च कड़ा पाया होया किथे कड़ा हथा च पाना किथे कोल वेसवा जाना तेरेदार मुखातब की कहना है

मेरे सिर की लोहड़ी पैंदी जो गया मैं देखी अजमाइश पूरा उतरदा पर हजूर वैराग जाके कहन लगे गुरा जो गया हो गया मैनू सिखा मैं जिथे जिथे भी अजमाया उथे उथे पूरा उतरिया पर जो गया तो कड़ी अजमाइश की कड़ी सात की पंथ दे वाली किसे बैराग चाहते जोगे नु मुखातब होके कहते हैं।

हो गया, रोई जाओ उतने तक, जितने तक तेरे अंदर हम मैं पानी बन के खाथानी बाहर नहीं आ जाती। जोगिया की कह मैं महाराज मैं भूल गया। हजूर कहने लगे जोगिया भूल गए, आपके पास हजूर कहने लगे बख्तिया कुछ नहीं।

अत कल्याणकारी अत सुखदाई ते अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तां वी चंगा ही है, रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है। नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने हार होइए। अपना बोलिया आप सुने।

के दरवाजे के खड़ोता होया बिट बिट पिया तक हसन भरी निगाह के नाल वेख ले भगवान ने किया है दरबार ओदा नाम भी पूछ लेना सी दरबार ने किया नाम भी दस क्या नाम है द्वार खड़ा तुझ रूप लिखो देख रहे हो वसुधा अधुरा पूछ तू दी।

भगवान ने अपने तखत को चार मारी तो इच्छा आ गए एक कहने लगे हो भगवान मेरा मित्र सुदामा मेरा प्यारा सुदामा भगवान कृष्ण जी बचे हैं पहुंचे जिसे सुदामा खड़ा है जाके की तर दूरों देख अयोध्या जी ने दूरों देख दंडौत कर रणौता कर रणौत जान दे एक तो होते ना तो मत्था टेक ले एक है दंडौत दंडौत हो गया सारा श्री लम्मा पर पर्वत पर भी दंडौत बंधन अनुभव आकवारे कितने कितने मुझे प्रेम यानी सार सिंह जो गुरु हो गया थे दंडौत कर सारा शरीर पूजा करके दो मिनट जोड़ के एक गुरु के नमन साथ भगवान कृष्ण जी सुदामे भी अगे जाके पहला दंडौत की दोनों देख दंडौत करे भाई साहब जी लिखते हैं ना

0: पहला गेट पर रखना, चार परिक्रमा करके सुनामे उसे जाते सारा गेम मित्र अजकल मित्र स्वाद पूरा है तो मित्र हम तेरे स्वाद पूरा नहीं तो वो मित्र मुखात्मक भी कर लगी निंदा भी कर लगे जित दिन स्वाद ना उपजे तित दिन बोलन गम सुदामे दिए प्रकर्मा करके छाती ना लह के आए ते जिस आसन से आ बैठे सब सुदामे ने बिठा शुक्रनी से राजा लिखे जाओ मेरा मित्र आया है जल ले आओ सुदामे वे चल तो शुक्रनी से राजा पानी कैसे इधर भगवान कृष्ण सुदामे नाम मिठे मिठे भजन कर सुदामे कितना चिर पिछे नहीं कुमार का जिसे तेरी हालत की होगी तेरी दिशा भी बन गई है ऐसे बिहार बिहार ऋषियों एक कंटित जाल पड़े पद को तेरे पैर झंडे चुके जितनी कोई भी थी सुदामा जी को
1: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

हुकुम नहीं मने तो जीवन परवान नहीं, ये मथा टेक दिता है ते पिछे की रह गया। ये मथा टेकिया है तन गुरु दा हो गया, फिर जो गुरु का हुक्म है ठीक, ये गुरु का हुक्म है रहनी रहे सोई सिख मेरा सतमसी।

मांगो राम ते एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम। ओ लॉर्ड, पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.